车过的，发车的，不是说明我们的门单的门门门你车是，我们车给不还我就给了，给我们单的，白来的，后来，因为这，什么摩托车都在是，后来。एक एक साधु पाचर लाख लाख हरी बहुत पर तार सूत है से अटले समझन के रहा है अने महाराज को समझन थी दूर होता पासे अने पासे होए तो दूर है अने समझन अपने रखा है समझन निवाच है ने ये आत्मिक है आत्मा निवाच इतने ये अपन दूर पासे नो प्रश्न ना रहे

0: नहीं।
1: परम पूज्य योगी जी महाराज अनेक बार साधुता नो अर्थ करता के खंबू एज साधुता, खंबू एज साधुता। एने पर्याय शब्दों में कहिए तो सहन करवू। आपनी भारतीय संस्कृति कहे छे के तमे सहन करो। श्री कृष्ण भगवाने गीता में अर्जुन ने कहू, हे अर्जुन, आ बदा द्वंदो छे, सुख दुख, हरक शोक, मान अपमान, आ बधु छे, तेने तू सहन कर। तान तितिशस्व भारत, सहन करवाय। अने आपड़ा प्रेम परा योगी जी महाराज, एमने तो आपने एक सूत्र आप्यू, ये एमना जीवन द्वारा एमने उपदेश आप्यो के सहन शक्ति ए जबरो गुण छे। सहन करवाती पोताना हैया मां शांति भरे छे, आनंद ना फुवारा छोटे छे, अने मोटा पुरुष जीवमांथी राजी थाय छे। आपणे कहीए के कोई मने बे ढोल मारी जाए अने सहन करवानी ताकत ना, सहन करवी नहीं, समर्थ तका जमणा करे एनी आ वात छे। दरेक मोटा पुरुषोए एमना जीवनमां आ सहन शक्ति केरवी छे, अने ए सहन करे छे तो एमांथी आपणने घणुं जाणवानुं मळे छे। अब्राहम लिंकन पण कहता कि मारा जीवननी अंदर मुश्किलीओ आवे ने, अड़चण आवे के आवुं सुख दुःख आवे, ए कहे छे हीराने माणेक समजो छुं, पतंग जेम दोरी खेंचे तो ऊंची आवे छे, ए माणस मुश्किलीओमां એ પોતે આગળ વધી શકે છે। ભગવાન સ્વામિનારાયણે પણ શ્રી હરિચરિત્રમાં સાગરની અંદર અનેક જગ્યાએ સહન કરવાના ઉપદેશો સંત ભક્તોને આપ્યા છે, જે આપણે પુસ્તકમાં જે પુરુષોત્તમ બોલ્યા પ્રીતે, તો એમાં ભગવાન સ્વામિનારાયણ શું કહે છે, હરિભક્ત દોષ વિના સહન કરે તેના પર હું

चरित्र गाऊं प्रभु जी तमारा, अखंड सौभाग्य गणी अमारा, इच्छा उरे एज प्रभु जी मारी, स्मृति रहो अंतर मात मारी। मंगल मूर्ति महाप्रभु श्री सहजानंद सुखरूप,